0: मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा संचालित, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित
1: कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।

0: मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा संचालित कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित
1: कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।

0: राम
1: रघुपति राघव राजा राम राजा राम राजा राम रघुपति राघव राजा राम
0: पतित पावन सीता राम
1: रघुपति राघव राजा राम
0: पतित पावन सीता राम
1: रघुपति

0: मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा संचालित, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित
1: कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।

मम केलति मद चेतसि मधुराधरमृतम् करकमल धर दलित ललित धर वंशी कलनी नद दलधमृत धन सरसि देवे सहज रस भर भरित धरहसित वीति सतत वह धरमणि मधुरमणि लीये चिकुरं बहुलं विरलं भ्रमरं मृदुलं वचनं विपुलं नयनं अधरं मधुरं वदनं ललितं चपलं चरित